0: रेडियो साइमन 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल.

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंडे हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।

हमें भी ऐसे पीछे करना अच्छा नहीं लगता, हम भी कल्चर लौंड हैं, इतने सालों से हिम्मत जुटा रहे हम, आज बोल देते हैं पसंद हो तुम हमें, तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।